नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोजलांगं परस्मृगवराभीतियस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतमवगणेर